बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है।

काफिर वे मीहूं एवरिंग अलुन दिरुव्वा नुफनुव्वा ने कमं ही कुरुए खलेग फानुवि दालवाश एहन्नकुन नूने तिमं खलेग फानुगे वेरी रसकलांगे गंदेव्वा विदालवमे हम कशवरुं तियबै मीहूं अलुन दिरुव्वा फुनुव्वा हुट्टे दें हम कशवरुं तियबै मीहूं कुरि अमल तोगे खबर तियबै मीहूं नं अंगवा हुट्टे आदि एकांतक की अल्लाह दादी फसेह कमके।

0: Viral Vibe. Viral Vibe.
1: मेरे सामने वाली खिड़की में की फस्तलों के हर्तों के म्यूजिक एम में फुरी हमें बयां को दे लवे आरटी बर्मन के फुरी हम म्यूजिक का पड़ोसन फिल्म का किशोर कुमार की आफवा मिलावे की मजा थिएट्रिकल गोत का घुसा ले दिन लवे नम विस यूट्यूब फंडा नु करण नवारी मिलावे के मिजाज एक को बदल को ले एना के वर्षन के मडमाय तिरे एकोस्टिक बेडरूम पॉप लवे UK ಲೇಲಿಗೆ ರಾಗುತ ಕಾಯಕು ಲವ ವೆಗೆಂದಿಯೇ ಜಮಾನಿ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮ್ ಲೋಪಿಗೆ ಲವೇಕ ಕರಣವಾಣಿಗೆ ಮಿ ಹುಷೇಳುಮ ಎಕಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಕುಂ ತಿರಿಸ್ ಅಂ ಮಿಲಿಯನವುರೆ ಗಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಬಿಫವೇ

0: दत्ता कोलम नोरे में गोंडी गई शींदे आहारे कोलम हुरे लफाना दत्ता ही शींदे
1: हाँ जंगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
0: खुद्दे वे कुड़ा कुड़ा है वो कमकों ऐहम मी है गेदा तोरो अमावे उफावेरी बेदाने
2: नुआ दिए के मेगाहर्ट्स दिवे एफएम अब दोस एम मेगा तोगा

0: साह से। बाय लवता की नुनी में वाहक तके। ये वाहक ता मिहारु आ अड़का आ रूह काय। ये फोरिया ये जोश किंगुस्तनी मुलिं एहिं दुनिया का।
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट था तू जाऊं उठ ना बिठ ना लाऊं ये की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
0: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हमको लव एक निस्ते आ देरु में को में हो मत वही के मिंदरु दे जहार रिपीट अंगार दो हुगेरे दिहे जहार अधे बुद्ध दो हुगेरे बार जहार
2: नॉक नॉक तेरा बाप पाया
3: Version 2.0
4: Version 2.0
3: Divahi FM, 91 MHz

0: पता नहीं मिलवाने फिल्म के कौन हिस्सा बेगा
1: तिलवा अन्ना ने एक आदमी हास ही पेनवा कुतिन तके
2: तुझे सब है पता है ना मंगला तुझे सब है पता
0: हां डाले ने तो
1: हां आगे बहुत
0: टाइम में मिजो बनी मिजो के में टचिंग सी है कि
1: बोर्डिंग स्कूल तो
0: बोर्डिंग स्कूल
1: ए ना इनने कार तेरेगा ईशान ना बाद हट ए ईशान इनने
0: बोर्डिंग स्कूल आणि लाफ ए दा तणु ए अन्न हिताम वेरे लावे मी तो इला वणे गुंदो देम मेती अखिया है ये प्रॉब्लम मिला वणे फिल्म के कौन हिसाब है ओके लवे ने के ने मासी ना के लवे के ना बोर्डिंग स्कूल के इंग्लिश पीरियड अन्ना ने एडजेक्टिव्स आ छि के वे दे फाडिंग एतनु ए छि ने गुडी मन्ना लवे
1: ए एक कला बोतुन तड़ा तं को
0: आ
1: मि हार अने हसी ने नोरी हल्ल मि होद देने
0: की हार अंगलो
1: हस्त को हम हस्त को
2: देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या
0: बम बम बोले लवानणी
2: देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमान
0: से थीम लव थारे जमीन पर अन्ननी
1: याद दे तेरे देते
0: ओहो मिलवा में एकों अन्ननी
1: थारे जमीन ऐ कुदी नशा
2: किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे
0: आर्ट कॉम्पिटिशन का तो ओके अभी मित्र लवे काय की गमे हस अभी हफ्ता के मूवी बोर्ड शो नि मादन हसिन वारो उफावे जेंगे हम वारे रीत फिल्म एती हो यानी के सबाला ले बने वारो उफावे जेंगे ए मम्मी फिल्म के तुर लवे काय की ग शो नि माला फार में मके वेला अस्सलाम वालेकुम.

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: नमो दिया एक मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम